0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.3
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.3
2: तथा ध्वरामाई अफसेट प्रेस सोलु दुतु नगरपालिका 5 सोलु कुम्बु

0: सोलू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: टाइम चेक सोलू एफएम स्टूडियो टाइम
2: 10 AM बिहानको 10 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुकुन नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संक्षेप सूर्य फिल्म स्टूडियो टाइम
2: इट्स 1 PM दिवसको 1 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वलामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतु नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू

0: रेड पांडा मैराथन को मिति परिवर्तन संबंधी सूचना। गत 2026 अगस्त 20 में आयोग विनाशकारी बाढ़ी पहरो ठूल जनधन को क्षतिप्रति हमी गहरो सकारात्मक छी राष्ट्रीय विपत्ति को गुजूला गंभीरता पूर्वक ध्यान दी उक्त मैराथन को मिति सारे हो। इस कठिन परिस्थिति में हम कार्यक्रम प्रति देखा अटूट सहयोग विश्वास को हमी संपूर्ण सहभागी प्रायोजक स्थानीय समुदाय तथा आम दर्शक हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। नया मिति में इस मैराथन भव्य र सफलतापूर्वक संपन्न गर्न हामीलाई सब सहयोग सूचना तथा शुभकामना प्रदान गरिदिनु होला भने हार्दिक आग्रह गर्दछौ। रेड पांडा नेटवर्क संघको सहकार्यमा यस आयोजक समितिले आगामी 2026 सेप्टेम्बर 5 मा आयोजना गर्ने भनेको रेड पांडा म्याराथनको मिति परिवर्तन गरी 2026 नोभेम्बर 28 मा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको विवरण सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ।
1: अध्यक्ष निमा टेन्डुर शेर्पा, हिमाली स्वास्थ्य र वातावरण सुभाष सोलुखुम्बु।

0: 才华之旅，索路 FM 出发站。सोलू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: साउन्ड चेक सोलू एफएम स्टुडियो टाइम
2: टाइम चेक को साथ न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलू दुकुन्दा नगर पालिका पास सोलू

0: सोलू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: संचय सोलू एफएम स्टूडियो टाइम
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू

0: Bondu FM 101.2 MHz.
1: Ujjwal bhavishyako lagi hamro abhiyan.
2: Time check. Sonu FM studio time.
3: It's 6 p.m. साँझको 6 बजे.
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुकुंडा नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू.

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Sound check. Solu FM in studio time.
4: It's 7 p.m. Saat ko saat baje.
5: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माई ऑफसेट प्रेस सोलू दुकुंड नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू

0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: सांचे सोलु एफएम स्टूडियो टाइम
2: इस 9 पीएम रात को 9 बजे
3: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू
4: आदरणीय श्रोतावृन्द तपाई अहिले सुनिरहनु भएको छ सोलु एफएम सोलु एफएम मा अब सुन्न सक्नुहुन्छ नेपाली सदाबहार गीतहरू

0: सोलू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: साइन चेक सोलू एफएम स्टूडियो टाइम
2: 10 पीएम रात को 10 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुतकुंडा नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू